0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: अंदेवनी मालागासराय नु मालागासरीन संगी संगी रिफ़ाम बाम तीन ब्रेरेरी केफ़कस कस चिम तीन सुन तीन मालागास दिलन दूसी दिलन एंगान फिज़ में ना कावे उन तुकातान सिमिस रेम तीन मालागास इन सुन बुज़ाना किन्याफ़ अचाने नत फ़ून रसेंड ज़ेपा मांगन तेन मालागास इज़मेनका रो मांगासियास चाइन निमा माल रो मालागासियावन बुफात चिन्याफ लेला सिन्वावन राम तेन जास ज़ेम्रिसकम रसनिमीच उल्नाम्बान तेन निवाइन नोतोन लाजन फ़ामा मेनताल जात तेन लाजन Zem zava misy iaina tsika taona. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy aho mamaly rehefa atso azy. De honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny. Tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de andoha ny azy zay tsy levony. Ny vahiny andia. Tumbuni andevuni.
0: Shota tumbukula, shota tumbukufafu.